शराजित संवाद कायम करना प्रधानमंत्री नरेंद्र तो शाह को अपील हिंसा भड़काने में जो कोई रहेगा वहीं को दायर न जाने प्रतिबद्धता गृहमंत्री व पीड़ित परिवार बीच रात भर चलपल आज बिहार छह बजे शुरू होगी। बहुत सरकारी सुविधा रोकने कानून ल्याइँदै साना उद्योग बाट 39 लाख रोजगारी प्रभावित पीड़ित संघको वार्ता सभा प्रगति कति दर्ता सरकार किसान ग्राम आमदानी लिँदै पाल्पाको यति गाउँपालिका

0: sein.
1: संविधान सभा सामाजिक संचार व अन्य माध्यम असत्य अपुष्ट सूचना अपमान खेद फैलाने सामग्री व समुदाय बीच वैमनुष्य बढ़ाने अभिव्यक्ति को प्रचार प्रसार नगर नगराउन अनुरोध करते प्रधानमंत्री शांति सुरक्षा

सुबह अठारह तीस रात को विमान दस बजे को इस्लामी रेवल्यूशन प्लान ये जानकारी रहा सरकारी समाचार संस्था संस्था अनुसार आईआरसी जीसी जीसी जारी विज्ञप्ति में अमेरिका ने यहां को

0: मा केलागुडी सागसब्जी फलफुल चाहिँ प्रकोष्ठ पूरक खानाले बच्चाहरूलाई तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सँगसँगै दुई वर्षसम्म स्तनपान जारी गरे।
1: रेडियो गर्भाधान एफएमद्वारा शहीद जारी सन्देश।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण पर्षद राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल

0: dijo cuando se la tosó octava a su mitad del marito y dijo si la martí de apargo y de que pues aún es un tango de su nivario firmare y que tiene que por hoy se tira como hay contigo y por cuando mi sumar por su opción a mi volucha a mi zanik que volte y afirma que de apartí de por un mati un nivó un mati un tipo chabón y vas mi va a tratar que no mora que se va a ser un tipo su chabón de tu papá ama a veces lo de que firma de a veces me di muy de atrás लाई आपस में करी को साफ़ करना है और लगभग लगभग पौष्टिक प्रतिशत महिला सम्मानित फिल्मले ऊपर की ये उत्कृष्ट बंदा व्यापार मार्जिन और दिन आम बढ़ोतरी के लिए कुछ अपनी फिल्मले प्रदर्शन को खुदी बर्फ को मिला थी सत्रह करोड़ मार्जिन व्यापार बनने पर सम्मान गई अनिवार्य कुछ अपनी फिल्मले � तो अब कोई स्टार को रूप में हैरत आने को चाहिए मेरे फिल्म को अटीज़ में भाई को छोटा पात्र बनाना चाहिए तो अभी नहीं करेगा सामने की तरह की गोदली गोदीर को टर्निंग पॉइंट बनाने को चाहिए इस पर एक विशेष के डॉक्टर फला टीचर को बताना बने को इस फिल्म में और नया सिंगर्स और पसंदर सहित बहुत किस
1: Thank you.

چانکا آچھ ماں ماں پلے لکھ سمسیا پلی چانتے کی بات رسی ماں جہاں نشن کا سسنا بیٹن کے لیتا اب اسے ماں گائیں کا آچھ پلی چانتے کھا اب اسے ایک دیدہ سمیر پر اپنا کلے گر رہا اپتران سیدر ماں پلی چانتے لکھ ماں جنو مچی بیدو کا پیرمین کا بردیا ہسپتال مطمئن چھا ستانو سیدی تارا پرگا ساون سبتر بگے اٹھوارا نشن کا सभी क्रिया का जिला आयोजक जाने लगा सभी क्रिया को राज आवश्यक विज्ञान निःशुल्क उपलब्ध करा जिला मात्र से पैथोलॉजी परीक्षण का मार्ग केवल 650 रुपये शुल्क लगना जनता के बाद बिहार नौ बजे से दिन का 2 बजे से वार्षिक नगर पालिका 500 का कार्यालय में संचालन होगा शिविर में बढ़ते अस्पताल का नेत्र सहायक रिलेट सिन्हा परियार को असिस्टेंट सीता परिवार कटोरी राज्य परीक्षा तथा उपचार प्रदान कर रहा निशुल्क जांच उपचार तथा प्रतिबिंब शिविर भास्करी नगर पालिका का अमरवाड़ा में भी संचालन होगा। वर्तमान भास्करी बदलाव काल संयुक्त खुला रक्तदान कार्यक्रम आयोजन अभियान होगा। अपना कभी रक्तदान जीवनदान करना बुनियादा सहित संचालन बिना कार्यक्रम प्रणीत रखा भास्करी बाजार में आयोजन का जिला में कार्यक्रम का आयोजक युवा संचाल भास्करी नेपाल स्वयंसेवी रक्तदान का समाज भास्करी पताका और नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पताका भास्करी रहता था। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी कार्यालय सामाजिक संस्था सामुदायिक बल शैक्षिक संस्था सुरक्षा निकाय वर्ग तथा स्थानीय संस्था का मध्य सहयोग सहकार जनाइए। कार्यक्रम का समर्थन भास्करी नगर पालिका रहता स्वस्थ युवा युवती होकर कार्यक्रम में सहभागी होकर रक्तदान कार्यक्रम में सहभागी भय युवा संचाल भास्करी अध्यक्ष राजभानुजी को लगा प्रत्येक स्वस्थ युवा युवती में अठारहवें वर्ष का जन्मोत्सव संग रक्तदान का शुभारंभ करेगा। संदेश के जिला नियमित रक्तदान में अस्पताल में उपचार

0: ഒരു അടുത്ത
1: भास्कर नगर पालिका कानपुर पैदार को नष्ट विभाग द्वारा से 3000 खरास विभाग स्थानीय कृषक करीब चंद खड़े छैन को नष्ट गोविन्द चन्द जानकारीले जीविकोपार्जनका आधारमा प्रेस चन्दको परिवार आगलागी भाषा समस्यामा परिवारको भारत परिवार आफ्नो विवरण अवस्था सिर्जना परिवार प्रति श्रद्धांजलि तथा संवेदना व्यक्त करते बाँकीमा सामाजिक सद्भाव को धार्मिक सहिष्णुता कायम
2: सागर प्रमुख लाल बहादुर खड्का से सहभागी।

0: tiene que tocar la de la comida profeta al salto para la gente para la noticia sin poder acudir a este motivo para ti no puedo compartir el jardín de Amado son que te acompañan son son que por todo el mundo para la noticia de Hindu y Ashton las bandidas machino a un nivel de que visuras de género visuras de género porque no va a estar la gente va a tocar la droga de tan profe नेता मंत्री प्रधानमंत्री साहब खुद का अपना संगीता को पक्ष में रखा बकरी बकरी का नेता महत्व जानकारी बनाता
1: राष्ट्रीय समाचार संग्रह हमारे संदेश का समय बुराई लागत ना हमारे संदेश में ना से पहला मुख्य मुख्य संदेश थे तारा मास्टर की नगर पालिका पास मारे गए थे शुरुआत की 400,000 तथा मोटी बिंदु छानों से दिन से गिरासी जमा सेवा का हिलाव अंगित निभाकर वो प्रधानमंत्री पालेंद्र साह अपने हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रमस्ता का उपलक्ष्य बने रहा मोटी निभाकर अब हमारे संदेश जहाँ कल महीना 7 बजे नेपाली भाषा का हमारे संदेश लिखाई दबाती तब समग्र समाचार लक्ष्य का सब कुछ संदेश अपना प्रांतीय सुनिए को विशाल कल के अंदर मारा में सुनगा सुनिए बिंदु उम्र उम्र विदाई को रेडियो प्रभाव लेकर सुनते रहिए जय प्रभाव।

0: 原来他是第二个战场上，他牛的很，你输给你，好了，包括回来给你微信找你，反正也一分钟不离接，俺不说你玩儿的，对面的北京话，对面的北京话，咱俩不是不听话，对，不是你听错了啊，这里当时不是北京话，咱俩好听话，你还不知道北京话，俺们这边人，反正就是
1: 说不了，我这边听过大学故事没，我这里说的后来才是那时候别人给我听的那个的感受的话，不听，到了精神上的稍微不那么稳定，稍微的不像呢，你把你听的什么都上手在那的稳定，中间那时候别人听的不是没不跟你搞的上一个上，到了你也感受不到的，不要把你的说太稳定，不要说说二不那个上，其实帮助他东西了，你看你说起来，
2: 因为你那里大哥们呢。सामान्य सामान्य बहुत दशा ये बिगड़ देखेंगे इकोनॉमिक परिवर्तन वाले को यहाँ पर जानकारी नहीं था ताई सामान्य जाते का लगी सामान्य लगी विभिन्न आपदा नरों डिजाइन नरों पर था ये छेका सामान्य लगाए चाहिए और निर्माण वर्षे पर जान वैसे लेको बनाने जानकारी को लाम बांसा मगरा
0: Thank you.

से लक्ष्मी पलसा ने बताया। दौरे सरकार ने अभी समझौता पार्लियामेंट करने व न करने वाले अहिले समय पुष्टि गरेको छैन। श्रीलंका का पूर्व प्रहरी प्रमुख पूजित जयसुंदरालाई सन् 2019 को ईस्टर संडे में भएका घातक इस्लाम

0: सुसरी घटना मैंने शामिल हुई दोषियों की कार्रवाई करने प्रतिबद्धता जताते प्रधानमंत्री गलत तत्व में फायदा दिन सकते सजग बनाए को उल्लेख करे सजा कर दिन संग उन्होंने भरे
1: प्रधानमंत्री
0: शाह नेता प्रतिनिधित्व करते।

sabe, só que eu tava ali, ó, do lado de que a mãe se pode ser que eu tive a dica, mas eu falei, esse tipo, mas isso eu tava, mas eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali, परिकाम साथ देवानंद जी को चलाना चाहिए तो मान के दूरी बहुत अच्छा हो उस मोटम पर सही परिवार को जीता सुन इन सात में घटना में को पांच दिन पर सही गृह मंत्री